0: नाता बदले शीश नवारिया दुनिया नाता बदले।
1: माता ने जदों अपने पुत्र दे नाल गुरु तेग बहादुर महाराज की शहीदी की सांझ की ते पुत्र कहन लगा माता मैं किन्ना नभागा मैं उस गुरु के दर्शन नहीं कर सकया। माता कहन लगी नहीं पुत्र सतगुरु गुरु नानक देव महाराज के घर के जोत ते जुगत का संबंध है। बेशक जुगत अज उन्हां दे शरीर विच नहीं पर जोत उन्हां दी गोबिंद राय विच प्रवेश हो चुकी है। अज उन्हां दी थां दे उत्ते उन्हां दे सुपुत्र सतगुरु गुरु गोबिंद राय महाराज जी जिहड़े ने सुभाए मान ने। कहण लगा माता फिर मैं उन्हां दे दर्शन करां मैनूं तेग गुरु तेग बहादुर महाराज दे दर्शन हो जाणगे। कहण लगी हां पुत्र रंच मात्र फरकनी मन विच रखना गुरु नानक देव महाराज की जोत गुरु तेग बहादुर महाराज का स्वरूप वह आनंदपुर साहब की धरती उत्ते सुभाए मान ने। कहण लगा माता फिर मैं गुरु के दर्शन करने वास्ते जाना मैं किन्नियां क चीजा कीमती तैयार करा। माता कहण लगी पुत्र गुरु नानक देव महाराज का घर किसी तो कुछ मंगता नहीं गुरु नानक देव महाराज के घर के भेटा लजाई दी है ते भेटा जिनी तू यथा छक तैयार कर सकता है तैयार कर लै गुरु के दर उत्ते प्रवान हो जाएगी। इन्हें एक प्रशादी हाथी तैयार किया जिदा आपां पिछले दिन अंदर दीवान विच जिक्र किया सी भई राजा भीम चंद मंगदा सी। एक पंचकला शस्त्र तैयार किया एक चंदन की चौकी तैयार की यह सारिया चीजा तैयार करके राजा भीम चंद जिहड़ा सी गुरु दरबार नूं तैयार होया। कहण लगा माता भई आपां नूं राजा रत राय तैयार होया। कहण लगा माता आपां नूं हुण तुरन वास्ते की करना चाहिए की जापता है की डिसिपलन है की मर्यादा है गुरु नानक देव महाराज के घर की। कहण लगी पुत्र अरदास करके तुरना चाहिए। कहण लगा माता अरदास करो मेरिया भेटा जिहड़ियां ने दर प्रवान होण आओ जरा तको। माता नूं जिवें पुत्र अरदास करन वास्ते कह रहे उस समय की इतिहासिक तथ्य कविता ने आप सांझा करन लगे। आओ सरवण करो।

तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, दास पूर्व सदा दशहरा, हो नाम हर का सदा चाचों दे प्रभ धरणी तरा। संसार रोगी नाम दारू मैल लागे, सच बिना गुर वाक निर्मल सदा चानण, नित साच तीर्थ मजना, साच न लागे मैल क्यामल धोई है, गुणे हार परोए किसको रोई है, विचार मारे तरह तारी उल्ट जो न आवे, आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे, आनंद अनदिन हरख साचा, दुख गलविख पर हरी, सच नाम पाया गुर दिखाया, मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नावणो, गावे गावण हार शब्द सुहावणो, सालाहे साचे मन सत गुर पुन दान दया मते, फिर संग भावे सहजन आवे, बेणी ता संगम सत सते, आराध एक अंकार साचा, नित दी चढ़े सवाया, गत संग मीता संत संगत, कर नजर मेल मिलाया, कहन कहे सब कोय केवड़ आखी है, हों मूर्ख नीच अजान समझा साखी है, सच गुर की साखी अमृत भाकी, तित मन मान्या मेरा, कूच करे आवे बिखला दे, शब्द सच गुर मेरा, आखण तोट न भगत भंडारी, पर पर रहया सोई, नानक साच कहे बेनंती, मन मांजै सच सोई, तनासरी महला पहला, जीवा तेरा नाई मन आनंद है जियो, साचो साचा नाउन गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान पारा सिरजन हारा, जिन सिरजी तिन गोई, परवाना आया हुक्म पठाया, फेर न सकै कोई, आपे कर वेखै सिर सिर लेखै, आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगमा गोचर, जीवा सच्ची नाई, तुम सार अवर न कोई आया, जाए सी जियो, हुक्मे होए नबेड़ो, परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाई कथ कहाए, सच मह साच समाणा, आप पाई आप समाई, हुक्मी हुक्म पछाणा, सची वड्याई गुर ते पाई, तू मन अंत सिखाई, नानक साहिब अवर न दूजा, नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सिरजन हार, अलख सरंदया जियो, एक साहेब दुए राह बाद बदंदया जियो, दुए राह चलाई हुकुम सबाई, जन्म मुआ संसार, नाम बिना नाही को

जाति, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूज पाती, काया बहु खंड खोजते, नव निध पाई, ना कश आयबो ना कश जायबो, राम की दुहाई राव। जो ब्रह मंडे सो ही पिंडे, जो खोदै खोजै सो पावे, पीपा प्रणवै परम तत् है, सतगुर होई लखावै। धन्ना गोपाल तेरा यार तार, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सुवारता रहाऊ। दाल सीधा मांगो खियो, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया साधन नीका, अनाज मंगो सत सीका, गऊ पैस मंगो।

परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास राव हर जन केवड भाग वडेरे जिन हर हर शरदार प्यास हर हर नाम मिलै त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिख्या लिखास तन तन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गूजरी महला पंजवा काही री मन चित वह उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंतो पाई तांकारी जिक आगै कर धरिया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किस की धरिया सिर सिर रिजक संभाही ठाकुर काही मन पौ करिया उडे उड़िया वैसा कुसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस राष्ट्र सुधान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सत बल जाइय तेरा अंत नाम पार भरिया राग आस्था महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्याव है तुद जी।

भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरुख अपरंपर करता जी तुद जीवड़ वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे श्रेष्ठ सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जन होई आसा महला चौथा। तू करता सजियार मैं डांसाई जो तुम पावे सोई थीसी।

सवैया पाए कहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक न जाने ओ सरी असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार कौशाढ़ कह गहे।

तजी नह जाई, नित नित राख्यो रतारू, तम संसार चरण लग तरिय, सब नानक ब्रह्म पसारू।

तुद नू पावन पानी बैसंत। याद रखना जिथे एक तो वध होगा वो प्लूरल हो जाए, पावन पानी बैसंत एक दो तीन ये प्लूरल हो गया, इसलिए इतने आवेगा खंगामन। तुद नू तैनू, हे वाहिगुरु तैनू हवा भी गाँवी है, पानी भी गाँवदा है, अग भी गाँवी। तुसी आखोगे वह किवें गाँवदे हैं, भाई वो हुक्म भी चलते हैं, वो आग्ञा

समाधि अंदर गावन तुझनो साध बिचारे अनेका ही साधु साधना करने वाले तो आडे गुणा दी विचार करके तो आनु

0: गावन तुझनों दे अर्थ की समझ गए कि बहुवचन है। गावन गौंदे हन तुदनु तुहनु कौन कौन जति जति किसनु कहा जाता है जिड़े जप धारण करने वाले जिन्हां ने अपनिया इंद्रिया काबू कर लिया उन्होंने जति कहते। सती सतवादी लिए भी आता है ते सती धानी लिए भी आता है। जेड़े परमात्मा दे दिते हुए विचों कुछ अगे वंडते हैं पर वो वंड सकते ने जेड़े संतोखी हो जेड़े आप ही भुख दे मारे ने वो किसी नू नहीं दे सकते। कहने ने बड़े बड़े जति बड़े बड़े सती बड़े बड़े संतोखी वो भी तुहानू गा रहे ने। गावन जति सती संतोखी गावन तुझनू वीर करारे। वीर का मतलब है सूरवीर बहादुर करारे मन लड़ाके जिड़े मैदानी जंग विच जूझ मरन वाले हैं वो भी तुहाडा नाम लैके तुहाडी सिफत सलाह कर रहे हैं। हाँ इनू वेदा नहीं कहना वेदा कहना क्योंकि एक वेद नहीं चार वेद हैं। गावन तुझनू तुहानू गाउंदे हैं पंडित। पंडित किसनू कहा जाता है जिड़ा विद्वान हो जिनू अंग्रेज उर्दू वाले आलम फाजल कह देंगे दें। जिड़ा लिटरेरी मैन हो जिन्हें बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की स्टडी की हो। गावन तुझनू पंडित पढ़ रखी सर रखी रिखी एक नू कहते हैं रखी सर जिड़ा रिखिया का भी श्रोमणी हो भी तुहाडे गुण गा रहे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले हर युग के अंदर वेदा दे समेत चार वेद ने ऋग वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्वण वेद उन्होंने वक् वक् ऋषि मुनि गा रहे ने। उन्होंने लखा ही करोड़ा ही मंत्र हैं जिन्हों द्वारा तुहाडी उस्तत की जा रही है और हर युग विच सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग विच तुहाडे गुण गा रहे ने। तुहानू गाउंदियां हन मोहणियां जिन्हां नू अपछरा भी कहा जाता है खूबसूरत स्त्रियां भी कहा जा सकता जिन्हां दी खूबसूरती सुंदरता मन मोहन मन नू मोह लैण वाली है वह भी तुहाडी सिफत सलाह कर रही। गावन तुदनों मोहणियां मन मोहन रख्या सुरगा मच पया दे सुरग मच पया दे जपजी साहब सुरगा है इतने सुरग है सुरग मच पया दे ये तीन लोक हैं सुरग लोक मात लोक पताल लोक भाव तिना लोगों के जेडे जीव हैं वो सारे ही तुहाडी सिफ सलाह कर रहे हैं। इना विश्राम तेरे ते आवेगा। गावन तुझनू रतन उपाए तेरे तुहाडे पैदा किते हुए रतन बहुत सारे ग्रंथां विच चौदह रतन कहे जांदे कईयां ने इस तो वध कईयां ने घट असी गिणती मिणती की बहस नहीं पैना भाव तुहाडे पैदा किते हुए अनेक ही रतन वह भी तुहाडे गुण गा रहे हैं। अठ सठ तीर्थ नाले अठ सठ सठ के ठठे नू सहरी है सठ विच अठ जमा कर दो ते अठाठ बन गए ते अठाठ तीर्थ दे वह भी नाले भाव नाल ही तुहाडी उस्तति कर रहे हैं।
1: जोर महाबल सूरा।

एक आकाशवाणी बारे ज्ञानी टैर सिंह पुट्टी वाले ने लिखा ओ ठुम साबर सुत्या तेरा पिंडा रहिंदा दूर तू तो सूला उत्ते सौ गया जिमे सूली ते मनसूर हुण चल खदराने दी ढाब ते जिथे करने माफ कसूर गल टुटिया गंढण वालिया महा सिंह खड़ा मजबूर एनी सुन खड़ो गए उठ के कहिंदे जो पावे मंजूर तेग पाली गात्रे टहल सियां अगे तुर पे रब दे नूर इस इतिहास विच मैं गुलाबे पंजाबे फत्ते वर्गे ड्रैकरां दा जिक्र नहीं करना पर गनी खां नबी खां वर्गे मर्दां दी गल जरूर करनी है जिन्हां ने गुरु देव नूं उच्च दा पीर बना के दुश्मन दे घेरे विचों कुंगराली लाल कने चूंदिया आलमगीर पहुंचा दिता इथे भाई नगाइया सिंह ने अपना घोड़ा गुरु साहब नूं भेट किया घोड़े ते चढ़ के करपाल दास दे डेरे गुरु साहब हेर पिंड पहुंचे करपाल दास नूं डरिया वेख के शहनशाह सीलवाणी ते अगे लम्मे जटपुरिया नूं इओ

से चपड़ी दी थां दे उत्ते अमृत सरोवर बनया है। इस धरती नू गुरु जी ने नेकां बल दिते ते अगे चल पे। इथों नेड़े पिंड बदेह दे इक पासे संघने जंगल दे झुंड विच गुरु जी समेत सिंघां दे बैठ गए। गुरदेव दे पैर दे अंगूठे ते पाका हो गया सी। इत्थे इक लुहार मुसलमान मज्जां चारदा गुरु जी दे कोले आ गया ते साहिबां दे नीला बण पहनिया होया सी। इसने चुके सलाम कीती ता गुरु जी ने अपने बारे दसिया। इस मुसलमान लुहार ने पांच बारी पीर पीर कहा अते शरदा नाल गुरु जी ने अंगूठे तो अपने मुंह दी पाप दे के चंबड़ी होई पट्टी खोलदा। इस शरदा वांदे सतगुरू ढाडी जता बलदेव सिंह बिल्लू जसवंत सिंह दीवाना इंज बयान कर।

पट्टी खोलने दे नाल पक्का फिस गया। आज इस जगह दे उत्ते गुरुद्वारा साहब पक्का साहब बनया है। गुरु जी ने लोहार नु बल दिता के तू ते तेरी औलाद जिसने फूक मारोगे नसूरा नु आराम आया करूगा। मंदे ते सैदो नगर दे लोक दुध लेके गुरु जी दे चरणा च हाजिर होए। बड़ी श्रद्धा दे नाल लंगर छकाए। महाराज ने लोकां दा प्यार वेख के खुशी दे घर विच आके क्या सिखो जिन्ना चिर गुरु घर ते श्रद्धा रखोगे तुहाडे नगरां च दुध दियां नदियां चलणगियां। तुहाडे पिंडां विच पलवान पैदा होणगे। एक गुरु जी दे वाक पूरे होए। सैदो ते मुंदे अज भी पलवाना दे पिंड हन। एतो संग तो विदा होके गुरु साहब अगे दीना साहब वालू

प्रभु की जय कृपा निदान हम हर गुण गावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्यास प्रभु मोह कब गल लावेंगे। हम बार तुम उदयान समझावेंगे। सुत किन खिन पूल बिगार जागत पित पावेंगे। जो हर स्वामी तुम देव सोई हम पावेंगे।

परम सत्कार योग गुरु रूप खालसा सार संगत जी जितने भी आप माई भाई अपने घर के कम कारा संकोच के शाहनशाह के पावन पवित्र दरबार में पहुंचे हो बहुत उत्तम कर्म वाले हो। काफी समय तो आप गुरबाणी का कीर्तन श्रवण करके अपने समय के स्वासा नु सपनिया बना रहे हो। जितना समा बाकी रहा है इस समय भी सफला बनाने लई आप सर्वत माई भाई अपनिया मनोबिरतियां एकाग्र करो। अपने ख्यालों नु बाहर जाण तो रोको तां जो मन की एकाग्रता और वृत्ति की अंतर्मुखता द्वारा गुरबाणी के कीर्तन और विचारां तो पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके, क्योंकि साडे वास्ते सतगुरों का हुक्म है प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं

प्रसार संगत को चंद्र कभी नहीं जानता, जेकर हीरे रेशम के दशालियों से लपेट दिता जाए जी कीमत वध नहीं जाती, पार्टियां लीरों से लपेट दिता जाए वो कीमत घट नहीं जाती। इन अपनी विद्या के उपर, अपनी कविता के उपर, अपनी रचना के उपर बड़ा माण है कि महाराज के दरबार कोई ऐसा कवि नहीं जिहड़ा मेरे सुनिए दे अर्थ करके सुना देवे। पर गुरु कलगी तरपार साहब का माण तोड़िया चाहते हैं, क्योंकि माण कदे सतगुरां नूं पाया नहीं। भावें औरंगजेब वर्गियां नूं अपनी हुकूमत का माण हो गया, महाराज ने औरंगजेब वर्गियां का माण भी तोड़ दिता। तो पहाड़ी रियासतों के राजा नूं अपने राज भाग का राजमत हो गया, तो महाराज ने इन्हों का हंकार भी करा दिता। तो भावें किसी अपनी हुकूमत का, भावें किसी अपने बाहूबल का, भावें किसी ने अपनी विद्या का माण होंदा, तो माण कदे परमेश्वर नूं सतगुरु सच्चे पातशाह नूं पाया ने। तुकी बसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक दर बदले। हर जीव अहंकार ना भावे, वेद को कुट ना रे।

नानक तीजै त्रे बिदलोका माया मोहे व्यापी चौथा पैर भया दौत बिहागै राम तिन घर राखियड़ा जो अन दिन जागै राम गुरपूछ जागे नाम लागे तिन्ना रहन सुहेलिया गुर शब्द कमावह जन्म ना आवह तिन्ना हर प्रभ बेलिया कर कंप चरण शरीर कंप है नैन अंगले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वसे खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया।

नानक सुरनार शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहनस देख बिचारिया भावत पंच रहे घर जानिया।

नीराम अन दिन पूर भया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन भानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया हर चरनी लिव लागे प्रगति जोत जोत मह जाता मनमुख परम पलानी नानक पूर भया मन मानिया।

रचना की जय गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मन मुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ निरारी नानक आपे आप।

अलाराम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अगन भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो सखा सहन प्यार प्रीतम नाम हर का जप जप।

गुण गाए राम रसाए रसी है गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघार हे भय काट निरपहो तरह दुत्तर गुर मिलिया कार्ज सारे रूप रंग प्यार हर सिंह।

पार साजन अपार प्रीतम, गुर शब्द सुरत लंघावे, मिल साध संगत करह रलिया, फिर ना पछोतावे, कर दया दान दयाल साचा, हर नाम संगत पावो, नानक पयम पै सुनो प्रीतम, गुर शब्द मन समझावो, तुखारी संत

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी है राम क्यों अमृत पीवी है हर बिन जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हौ सतगुर विटो हो वारिया जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम मेरे अंतर हुए विगास प्रियो प्रियो सच नित चवा राम प्रियो चवा प्यारी शब्द निस्तारी बिन देखे तृप्त ना आवे।

अन बिन गुरु गोपाल ते आई, हम सतगुरु बिटहु कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजल तारिय राम, गुरुदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड़ निस्तारिय राम, हम मूड़ मुगद किस्मित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुन तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग है सतगुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, कायां गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास बसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगे सीस भेत देव, जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करहु प्रभ दाते, नानक अंक समावे, तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाद, अपरंपर अपरपरा, जो तुम त्यावे जगदीश, ते जान पहो बिखम तरा, बिखम पहो तिन तरया सुहिला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवाक सतगुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेओ अगम, गुर सतगुर बचन लहया, तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जा बह गुरमुख हर नाम बोल है, जा खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेव है ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिनसे, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करतै, जिन गुरबचनी सच भाखिया, ते धन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप पौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चलावह प्यारे हों तिवें चलना, हमरे हाथ किस नाही, जां तू मेलह ता हों आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करे हो को पाई, जो गुरबचनी हर मेल लया, नानक दयाल हो आतने ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला, तू अंतर जामी हर आप, ज्यो तू चला वह प्यारे हो तिवें चला, तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश, सब करता श्रेष्ठ नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख मात, जिन को तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम अराध्या, तिनके पाप एक निमख सब लाथे, जिन गुरबचनी हर जापया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपया, तिन देखे हों भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश, सब करता श्रेष्ठ नाथ, तू जल थल महियल भरपूर, सब ऊपर साच धनी, जिन जपया हर मन चीत, हर जप जप मुक्त घणी, जिन जपया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हंस पलत जन पए सोहेले, हर राख लिए रखन हार, हर संत संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बनी, तू जल तल महियल भरपूर, सब ऊपर साच तनी, तू थान थरंतर हर एक,
हर एक को एक रविया। वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ, मुख हर हर नाम चवया। सब चव है हर हर नाम करते, असंख अगणत हर त्यावे। सो धन तन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते पावे। सो सफल दर्शन देहो करते, जिस हर हृदय नाम सद चवया। तू थान तनंतर हर एको एक रवया। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है जिसका मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिक है। हर गुण हृदय टिक है तिस कह, जिस संतर भव भावनी होई। बिन भय किन्हें ना प्रेम पाया, बिन भय पार ना उतरिया कोई। भवो भावो प्रीत नानक तिस है लागे, जिस तू अपनी कृपा करहे। तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी। तिस मिल है तुखारी महला चौथा, नावण पुरब अपीच। गुर सतगुर दर्श भया, दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया, अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन मह बिनसी, हर पाया प्रभ अविनासी। हर आप करतै पुरब किया, सतगुरु कुल खेत नावण गया। नावण पुरब अपीच, गुर सतगुर दर्श भया। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बणी खिन खिन निमख विखा। हर हर भगत बणी प्रभ केरी, सब लोक वेखण आया। जिन दर्श सतगुर गुरु किया, तिन आप हर मेलाया। तीर्थ उदम सतगुरु किया, सब लोक उधरन अर्था। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ। खबर भई संसार आए त्रै लोआ, देखने आए तीन लोक। सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसया गुर सतगुरु पूरा। तिनके किल विख नास गुआया, जोगी दिगंबर सन्यासी। खट दर्शन कर गए गोष्ट ढोआ, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ। दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया, जगाती मिले दे भेत। गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे। जिन हर हर नाम त्याया, गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले। तिन जम जगाती नेड़ ना आया, सब गुरु गुरु जगत बोले। गुर कै नाए ले सब छुटक गया, दुतिया जमन गए गुर हर हर जपन किया। तृतीया आए सुरसरी, तह कौतक चलत भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत, किने आड़ ना दाम लया। आड़ दाम किस पया ना बोलक, जगातिया मोहन मुंदन पई। भाई हम करह क्या किस पास मांग है, सब भाग सतगुर पिछे पई। जगातिया अपाव सियाणप कर विचार दिठा, पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी, तह कौतक चलत भया। मिले आए नगर महाजना, गुर सतगुर उठ गई। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ, सिमरत कीता सही। सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता, सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया। देही नगर कोट पंच चोर बटवारी, तिनका थाउ थे हो गुवाया। कीर्तन प्राण नित पुन हो वह, गुर बचन नानक हर भगत लही। मिले आए नगर महाजना, गुर सतगुर उठ गही। तुखारी संत महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोल कमाई लालना गुर मन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यों जल मीना,
लागा रंग मरारा कीमत कही न जाई ठाकुर।

सब गुण तेरे, खनिया वन्या दर्शन तेरे, दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमक दृष्ट पेख जीवा, अमृत नाम सुनीजै तेरा, कृपा करह ता पीवा, आस प्यासी पिरकै ताई, ज्यों चातरक बुंदेरे।

प्राण सुख दाता गुरमुख जाता सगल रंग बने आए सोई कर्म कमावे प्राणी जेहा तू फरमाए जान को कृपा करी जगदीश्वर तिन साध संग मन जीता कहो नानक जियड़ा बलिहारी जियो पिंड तौ दिता निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ताक लिया मोहे पापी पड़दा ताक नहारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते अवनासी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख विधाते उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कह तू कद का नानक दास ता कह बलिहारी मिले नाम हर निमका केदारा महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन राम नाम नित गावी अगम अगोचर ना जाई हर लखिया गुरपूरा मिले लखावी रे रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी तिस जन को हर लिव लावी रे सब को भगत करे हर केरी हर पावै सो थाए पावी रे हर हर नाम अमोल का हर

सब छड़ावी है रे, हर नाम आराध्य है, से धन जन कही है, तिन मस्तक भाग तुर लिख पावी है रे, तिन देखे मेरा मन बिगसै, ज्यों सुत मिल मात गल लावी है रे, हम बारिक हर पिता प्रभ मेरे, मोको देहो मत्ती जित हर पावी है रे, ज्यों बसरा देख गऊ सुख मान है, त्यों नानक हर गल लावी है रे, केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर हर गुण कहो रे, सतगुरु के चरण तोए तोए पूजो, इन बिद मेरा हर प्रभ लहो रे, रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखै रस, इन संगत ते तू रहो रे, मिल सत संगत कीजै हर गोष्ट, साधु स्यों गोष्ट हर प्रेम रसायन, राम नाम रसायन हर राम नाम राम रम हो रे, अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता, ए दूर करहो आपन गहोरे, जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे, केदारा महला पंजवा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माई संत संग जागी, प्रिय रंग देखै जपती नाम निदानी रहाओ, दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी प्यास बडानी, अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी, देख दमोदर रहस मन उपजेऊ, नानक प्रिय अमृत

तीन दुखी एक मन अनाथ नाथ राख हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करो खट कर्म जुगत ध्यान धरो अपाव सगल कर हारियो नह नह हुतह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हरे।

महाराज ने हे काल पुरख वाह आश्चर्य गुरु अंधेरे विच प्रकाश करने वाले आश्चर्य काल पुरख श्री वाहिगुरु जी सारिआं दे प्रतिपारक सारिआं दे प्रेरक सारिआं दे नियंता सारिआं दे करता तरता वाहिगुरु जी ए सब तेरी रचना तेरा खेल है ए सब खेल तमाशा संसार दा आउणा जाणा व्यापक रहना दुख सुख जो भी हन क्रिया कर्म ए सब वाहिगुरु दे खत है ओसे नूं मेरे पंचम पातशाह ने लिख दिता जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी खास तुम्हारे हाथ ओहदे है डोरी ए धर दिते ने बना दिते ने जी जंत 84 लाख जूनिया जे करावे सो करना नानक दास तेरी शरण सोवड भागियो आप 2 सवैये संपूर्ण हो गए शाम दे समय विच महाराज फेर बख्शिश करन आपां गुर शब्द दी विचार नाल जुड़िए ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

निरपाओ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच सैप ही सच नानक होशीत सच हर कीरत साध संगत है सिर कर्मन कह कर्मा को नानक तिस पायो प्राप्त जिस पूर्व लिखे का

0: मेल करके तमाशा रचे है सब तेरी ही रचना है। अनंत प्रकार दे जीव जंत तू पैदा कीते हन उस अकाल पुरख दी अगे जो महिमा कर रहे हन सरवण करिए।
1: अगम अनंत अनाद
0: हे परमेश्वर वाहिगुरु तू अगम अनंत अगम कहिए जो साड़ी बुद्धि तो इंद्रियां दी पहुंच तो परे होवे जो वेद शास्त्रां करके गमता विच ना आवे। अनंत अर्थमैट हिसाब दी चीज है जो गिनती विच ना आवे ओ अगम है मन बुद्धि दी पहुंच तो परे है हिसाब किताब तो गिनती तो परे है। अगम अनंत अनाद ओदा कोई आद नहीं है मुड नहीं कोई जान सकदा कौन कहे को तू कद का पता ही नहीं कदों वाहिगुरु कदों तो है संसार विच

नमाज तुवंगा काले नमाज तुवंगा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजांत्रंग नमो सर्वोदृष्टंग नमो सर्वकृष्टंग नमो सर्वरंगे दर्पंगे नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजय पिजय समातंग प्रसिजय कृपालंग स्वरूपे गुकर्भंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धिंग निवासी चारपट छंद दव प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद दव प्रसाद आद रूप नाद मूर्त यौन पुरुख पारु सर्व मंत्र मान देवा पेवाद उदारु सर्व पालक सर्व काल गो जत सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसालु नाम ठाम न जात जा कर जन्म मरण विहीन जकर बकर बिर चदर जाक मानी वरतीन लोक चौदां के बिखय जग जापी जह जाप आद देवन आद मूर्त थप सब जय थाप परम रूप बनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रच उस यम पव गण भंजन हार कालहीन कला संजोत काल पुरख देश धर्म धाम सु परम रहत अभूत लख अभेश अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमी का नवस्त एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदि रूप सूत अंग ही न पंग नातम एक पुरख पार सर्व लायक सर्व गायक सर्व गोप्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व देन पेख सर्व शास्त्र न जाने जे रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाक नीत भक्त नैत कोट सिमरत प्राण शास्त्र नावई बहुचित मद पार छंद दव प्रसाद गुणगान उदार महिमा पार आसन भंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निज दिन नाश आजान बाह सहन राजन राज पानन पान दीवान देव उपमा महान इंद्रा निंद्र बालान रवा बाल रंकान रंक कालान काल अनुभूत अंग आपाप अंग अदमित पार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपैने काम अत दुत प्रचंड मित गद अखंड अलिष्ट कर्म दृष्ट धर्म सर्वपरनाढ़ अण दंड बाढ़ अंजा श्री छंद दव प्रसाद गोविंदे मकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे कामे कुजंग प्रयात छंद जदर चकर करदा जदर चकर हरदा जदर चकर दाने जदर चकर जाने जदर चकर वरती जदर चकर भरती चदर चकर पाले जदर चकर काले जदर चकर वासे जदर चकर वासे जदर चकर माने जदर चकर दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काही अजन्मंग अजाही न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिष्ठा दिशा दृष्ट कृष्ठ भगवती छंद दव प्रसाद कथ दे क्या शिज देसा क्या पिज बेसा है क्या गंज कर्म है क्या पंज ब्रह्म है क्या पिज लोक है क्या दत सुख है क्या भूत वर्ण है क्या भूत कर्ण है के राजंग प्रवाह के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्व वर्ण है के जगतंग रति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्राह्मण स्वरूप है के अनुभव अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चतरंग विहीन है के कह दीना है के रोजी रजा कर ही मेरे हाक है के पाक बेअब है के गैब लगैब है के आप बोल गुनाह है के शाह अनुशाह है के कारण गुनंद है के रोजी दयांद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र बाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल
ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪਾਲੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪੇਖੀ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪੇਖੀ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਕਾਜੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਰਾਜੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਸੁਖੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭੁਖੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਤ੍ਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਪ੍ਰਾਣੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਦੇਸੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਬੇਸੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨਿਆ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਜਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਸਾਪਿਆ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਭਾਨੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਮਾਨੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਇੰਦ੍ਰੈ ਕੇ ਸਰਵਤਰ ਚੰਦ੍ਰੈ ਕੇ ਸਰਵੰ ਕਲੀਮੈ ਕੇ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੈ ਕੇ ਆਕਲੋ ਲਾਮੈ ਕੇ ਸਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ਕੇ ਉਸਨੋ ਵਜੂੰਗਾ ਤਮਾਮ ਰਜੂਆ ਹਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮੈ ਸਲੀਖ ਤਮਦਾਮੈ ਗਨੀਵਲ ਕਾਸਾ ਗਨੀਵਲ ਪਰਾਸਾ ਬਨੰਦਲ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨ ਵਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀਜਲ ਤਮਾਮੈ ਰਜੂਵਲ ਨਿਦਾਨੈ ਹਰੀ ਫਲ ਜੀ ਮਹਿ ਰਿਆ ਗਿਰਿ ਕੇ ਨਾਨੇ ਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਪੇਦਾ ਪੰਗ ਹੈ ਆਜੀ ਜੋ ਨਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਵਲ ਖਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੋਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਧਰਮੁਗਤ ਬਬੂਧ ਹੈ ਪਰ ਭੁਗਤ ਪ੍ਰਵਾਹੇ

मैं मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व भारण है, द्रद के धरण है, जग के कारण है। मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्ववास है, सर्वनाश है, करुणा कर है, विश्वम पर है, सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, ब्रह्मांड से है, कल खंड से है, वरदे पर है, करुणा कर है, जपा जपा तपा तपाए, अग्रता करता अमृता अमृत है, अमृता अमृता करुणा करता है, अग्रता करता तरणीद्रत है, अमृतेश्वर है, परमेश्वर है, करता करता अमृत अमर है, अग्रता करता अमृत अमृत है, अजबा कृत है, अमृत अमृत है, निर्नायक है, कलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, पहु पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वकृत है, सर्वकर्ता कर है, हरदार है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्मवास है, परमात्मा है, सर्वात्मा है, आत्मवास है, जस के जस है, पिंग पर्या छंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो दे तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीज बीज बीजे, नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादिंग भूते, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आसासे, नमो बांक बंके बंगी स्वरूपे, अनंगी नामे दृभंगी दृगाले, अनंगी कामे एक श्री शंभ, अजया लय पय वय भुवजुनाथ काश गंज पांज लख बख काल दयाल हरि बेघ नाम काम काटा नाथ प्रमादे यो नियम नाराग्य न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग भरमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमासल प्रणामे समासल प्रणासे अगंजलो नामे समासल निवासी निरकामंग बभूते समासल स्वरूपे गोकर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग बभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी गरीमन करिंदा समाज तुल निवासी अजय बभूते अजय गनीमे हरियंग करियंग गरीमन हिमय चतर चक्र भारती चतर चक्र भूते सुयम पव सुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपांगंग बभूते चतर चक्र भारती चतर चक्र भुगते सुयम पव सुभंग

कर्म होवै हृदय न समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जप्यो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावो एहो सची बाणी। सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी। किंदे कच्चे रुण दे कच्चे कच्ची आंख खाणी, हार हार नित करे रसना कहया कछु न जानी। चैत जन कहर लया माया, बोलन पैर बाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो और कच्ची बाणी। गुरु का शब्द रतन है हीरे जद रड़ाओ, शब्द रतन जद मन लागा। एह वास माओ सब स्थिति मन मिलया, सच लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जद रड़ाओ, शिव सकत आप पाए कह करता पे हुकुमरताए। हुकुमरताए आप देखे गुरमुख सब जाए, तोड़े बंधन उपमुक्त शब्द मन वसाए। गौरमुख जिसन आप करे सो होवै, एक सस्यों लिब लाए, कहे नानक आप करता पे हुकुम बजाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, दत्ता सार न जानी, दत्ता सार न जानी। गुरु बाजों

हे श्री राम मेरी आर तुम मजद रखी ता तू जग मैं आया जोत रखी तद बच ता तू जग मैं आया हर आपे में ता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी पूजया तो जल दवा जल दरी आया कह नानक श्रेष्ठ काम रजा जोत राखी ता तू जग मैं आया मान जाओ पया प्रभागम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल न सखिए सुख दुख न व्यापे गुर चरण लागे जन भागे अपना व्यापे अनहत वाणी गुर सब जानी हर नाम हर रस भोगो गहन प्रभाव मिलया कारण जो कारण कारण जोगो हे श्री राम मेरे आए इस जग में आए कहे के तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद तुद श्री राजा तू जग में आया जिन हर तेरा रजन रजया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखया पाया।

चिताय न बिस्रय काहूं बिरा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ सूही महला पंजवां। जो किश करे सोई प्रभ माने, ओई राम नाम रंग राते। तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। जो किश करे सोई प्रभ माने, ओई राम नाम रंग राते। तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जे वड़ना कोई, भगता बन आई प्रभ अपने स्यों। जल थल महियल सोई राव।

बावड़ी अपने आप सा जो अपने रचनाओ तुई कुदरसा जिया कर आसन रिठो चाहो दाता करता आप तू तुझ दे वह कर पसाओ तू जानो ही सब सह दे लैसे जिन कबाओ कर आसन रिठो चाहो कर आसन रिठो चाहो हर प्रे

0: विस्माद विनिखे भेल गाणी विस्माद अति विस्माद खाणी विस्माद साद लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विनियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सुषमा सलाह विस्माद उज्र विस्माद रहा विस्माद निर्णय विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वे उदारिया समाद नानक बजन पूरे पाग महला पहला
1: कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुख सार कुदरत पता लिया कासी कुदरत सर्व अकार कुदरत वेद प्राण सेवा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनना कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसे रंगी कुदरत जी जहान कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैष्णहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पैनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार।

दुख दारू सोहरू पाया जा काम न होई, तू करता करना मैं नहीं जाहो करी न होई, बलहारी खुद तपस्या तेरा अंतर जाए लख्या रहा, जात में जोत जोत में जाता अगल कला भरपुर रहा, वो सच्चा

0: श्लोक महला पहला दरप्पा संतोख सूत जत गंडी सतवट एह जनेऊ जी का है ता पांडे कत नाहे तुटे नाम लगे नाहे जले ना जाए तन सुमान स्नान का जोगल चले पाए चौकड़ मुलड़ाया बह चौंके पाया सिखा कल चढ़ाया गुर ब्रह्म छिया ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तका गया महला पहला
1: लख चोरिया लख जारिया लख पूरिया लख गाल

तगना तुरसूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवैंत दाढ़ी

हुरमत कृष्णो अगली अवज में दूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बचो गवाए अगला मुहिमो पाना खाए जिसका जिता खावना किसकी ऐसा बस नानक हुकम ना चल रही नाल खसम चला अरदास।

आक्रय साथी फिर आक्रय मार, एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिछियार, आक्रय करे आप हो कैसे करी पुकार, नानक करना जिनकी फिर तिसी।

प्रणाम भगत जना के मन विश्राम रहा। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सिमरन दुख जम न सह, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु सिमरत कछ बिगन न लागे, प्रभु के सिमरन आम दिन जागे, प्रभु के सिमरन पहु न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख ना संतापे, प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निधान नान करंग, प्रभु के सिमरन रित सिद्ध नौ निध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तद बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिन सह दूजा, प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दगे मानी, प्रभु के सिमरन हो सुभला, प्रभु के सिमरन सुफल फला, शेष सिमरे जिनाप सिमराय नानक ताके लागू पाए, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब किस सुझे, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए, प्रभु जी वसे साथ की रचना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरें से तनवंते, प्रभु को सिमरें से पतवंते, प्रभु को सिमरें से जन प्रवान, प्रभु को सिमरें से पुरख प्रदान, प्रभु को सिमरें से वे मोहताजी, प्रभु को सिमरें से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरें से सुखवासी, प्रभु को सिमरें सदा विनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभु को सिमरें से परोपकारी, प्रभु को सिमरें तिन सदव लिहारी, प्रभु को सिमरें से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरें तिन सुख ब्यावे, प्रभु को सिमरें तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरें तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरें तिन आनंद घनेरे, प्रभु को सिमरें बसें हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु के सिमरन कार्य पूरे, प्रभु के सिमरन कबू न झूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सह समानी, प्रभु के सिमरन ने चलासन, प्रभु के सिमरन कमल विगासन, प्रभु के सिमरन अनंत चुनकार सुख, प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन का प्रगट प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए, हर सिमरन पे सिज्जति जाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगला कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस ताप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर दुख मंजना घटघट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी, जय मात पिता सुमित न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय माँ भ्याम दूध जम दलै, तें केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल हो गए अत भारी, हर को नाम छिन माय उदारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोड़ी बंदना परे, हर का नाम जपत निस्तर है, अनेक माया रंग तिथ ना बुझावे, हर का नाम जपता घावे, जे मार्ग ये जाते केला, तें हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा ध्याये, नानक गुरमुख परम गत पाइये, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत तें पार पराही, अनेक विघन जय आय संहार है, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हों मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई ऐसा के संग, जेह मार्ग के गने जाय न कोसा, हर का नाम हुआ संतोषा, जेह पैंडे महा अंध गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जेह महाप्यान तप बोगाम, तह हर के नाम की तू ऊपर छाम, जहां त्रिखा मन तो जाकर खे, तह नानक हर हर अमृत बरखे, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम, हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, हर जस कर तम दिन रात, हर हर औख छार तमात, हर जन के हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है, हर का नाम जन को मुकुट जुगत, हर के नाम जन को त्रिपद भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कप पर न भंग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन के ओठ सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रकट नहीं छपे, हर की भगत मुकुट बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा,
नाम की महिमा संत रिदिवस है, संत प्रताप दुर्सभ नस है, संत का संग वडभागी पाई है, संत की सेवा नाम त्याई है, नाम तुल कछवर न होए, नान गुरुख नाम पावे जन कोए। श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व डंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र स्मृत व्याख्यान, जोग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग मन मदे फिरिया, अनेक प्रकार किए बो जतना पुन दान हो में बहु रत्ना, शरीर कटाए हो में कर राती वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरुमुख नाम जपिया एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव है, महा उदास तपी सचीव है, अगन माहे होमत प्राण कनक अश्व है वर कुमदान, न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम मत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मेल न जावे, हर के नाम सम सरकछ नाहे नान गुरुमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीरथ दे छुटे गर्व गुमान ना मनते हुटे, सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे मन ते कभु न भिख्या टरे, जल तो वह बहु देह नीत शुद्ध का हुए काची भीत, मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच, बहुत त्याण जम का पौ व्यापे अनेक जतन कर तृष्णा ध्रापे, टेक अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गहनी सिजे, छूट स्नायु पयाल मोय व्यापे माया जाल, अवर करतूत सगरी जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को अपनी शोभा लूरे सात संग एहो मैं छोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानकता के बल बल जासा, सगल पुरुख में पुरुख प्रदान सात संग जाका मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबते ऊंचा, जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल सिष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुण्य नहीं लेपा, निर्धन को धन तेरो नाव निथावे को नाव तेरा छाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान, कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत में जानो आपे आपन संग आप रब राते, तुमरी उस्ता तुम पे होए नानक अवर ना जान सोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सात संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी हर को जा सुन रसन वखानी, सगल खान ते ओ उत्तम खान नानक जे कट वसे हर नाम। श्लोक निर्गुनियार आनिया सो प्रभ सदा समाल, जिनकी आतिश चीत रख नानक निभी नार अष्टपदी, रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज त्यौहार सिगारिया गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद, बिल पया ऊपर साख सैन मुख पियाओ बैठ को दैन, ए निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सी जय, जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत परात मीत बनता संघसे, जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक मूला, जे प्रसाद भोगे सब रसा सगल सामग्री संग साथ बसा, दीने हस पाव करण नेत्र रसना तें त्याग अव संगरचना, ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काढ़ लियो प्रभापे, आद अंत जो राखन हार तिस्यों प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नवनिद पावे तांस्यो मूड़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर ससरा हजूरे ताको अंधा जान दूरे, जाकी टैल पावे दरगे मान तिसे सारे मुगद जान, सदा सदाए पूलन हार नानक राखन हार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचे साथ छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने जो होवन सो दूर पर आने, छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे धोए गर्द प्रीत भसम संग होए, अंधकूप में पतित विकराल नानक काट लियो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पेख अंतरमल माया छप स्नाय कछ करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्या पहलो सुवान,
अंतर अगन बाहर संसुआ गल पाथर कैसे करया था। जाके अंतर बसे प्रभाप नानक तेजन सह समात। सुनंदा कैसे मार्ग पावे कर गए लियो ओढ़ निभावे। कहाँ बुजार्थ बूझे डोरा निष्कहिय तो समझे पूरा। कहाँ विष्ण पद गावे गूंग जतन करे तो भी सुरभंग। कहे पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत वहाँ उस गवन। करतार करणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे। संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई तासु प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे अनंत केर माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मन प्रतीत काल न आवे मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह चूर विकार महालोभ द्रोह। याहूं जुगत बिहाने कहीं जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम कहे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सुगनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूतर धारी तुम ते होए तो आज्ञाकारी। तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा।

दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कानंद खोट कवावे। एक बीना दे दस पीहर ले, तो मूड़ा को कहा करे। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सूखता हु मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक किन पाया। अगरत साहब अपनी दे रास, खात पीत बरते अनुलास। अपनी अमान कछ बोर सहाले, अज्ञानी मन रोष करे। अपनी प्रति तापी खोवे, बहु उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्ति आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक पांच माया के हेत, सर पर हो जानने। बिरख की छाया स्यो रंग लावे, ओ बिनसे ओ मन पछतावे। जो दिसे सो चालन हार, लपट रहे होते हैं अंधर अंधार। बताओ स्यो जो लावे नहीं, ताको हाथ ना आवे के। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटम समाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अशु वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या क्रोह मो अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर कर्तुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे। मिथ्या नेत्र उपेक्षित पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को उठावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या वास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल देह नानक हर हर नाम लय। वृथि ताकत की आर्जा, साच बिना कह होवत सूचा। वृथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन वृथे सब काम, ज्यो कृपन के निरारत दाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाव, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत। जानन हार प्रभु पर बीन, बार पेख ना साहू कीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बस निरंकार, किसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सुख जाने, अपना किया पैमाने। आपने आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यानव सगल ते रहत, सब कर जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर या समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरि श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिस जायमेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। जे प्रसाद सुगंध तन लावे, तिस को सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मनंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंब हंडावे, तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैता का जस गावी जय। जे प्रसाद तू सब को माने, मुक्ता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दर गय मान पावे, नानक पद से ती घर जावे। जे प्रसाद अरो कंचन देही, लिव लाभ तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझ को ना पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपूखन पैरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी, मन तिस प्रभ को कभू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बंत बनाई, उठत बैठत सत तिसे ध्याई। तिसे त्याय जो एक अलख है, इहां उहां नानक तेरी रखे। जे प्रसाद करें पुन वो दान, मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभ को सास सास चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुरु प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद देखे विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फले। जे प्रसाद परम गत पावे, जे प्रसाद सुख सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग अव कत लागो, गुरु प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनु विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूल तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू ताशो रात। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सोनाओ, आप गवाए सोहर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसैवन सोए, प्रभ दया ते मातुतम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किनु लया। जित जित लावो तित लगे हरनाथ, नानक इनके कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुक्ता होए। सुनमीता नानक बिनवंता, सात जना की अचरज कथा। अस्पदी साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रकटे सो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निवेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महिष्मानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुले। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग हुए सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध के संग नक तू धावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर। साध के संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नाही हो ताप, साध के संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कबू धावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त गोचर लहे, साधु के संग अजर सहे। साध के संग बसे थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उधारे, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे। साधु के संग सो धन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुरु गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नाही कचताल, दर्शन पेट थोत निहाल। साध के संग कलुखत हरे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग विचरत अलमेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बस है, नानक उदरे साध सुन रस है। साध के संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग नमन ते बिस्तरे, साध संग सर पर निस्तर है। साध के संग लगे परम मीठा, साधु के संग कट कट मीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते तब ख्याने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा उचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न भाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेख है एक अस्विन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अस्पदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व को शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टमान, जैसे राज रंग को लागे तुल्पमान। ब्रह्म ज्ञानी के तीरज एक, जो बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक जो पावक का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभाव करे।
ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ पुराना भया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सज्जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुत्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाय आखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक उर्धार है जो अंतरनाम, सर्व में देख है भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। परत रह रूप न पेख है नेत्र, साध की टहल संत संघेत। कर्ण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद दिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोखते रहत, नान कोट मदे को ऐसा परस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिशन की माया ते होए पिन। कर्म करत हो वह ने कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काऊ फल की इच्छा नहीं बाँचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। मन तन अंतर स्मरण गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ और नाम जपावे, नानक को वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग है दुष्ट का संग। मन ते बिंस है सगला परम, कर पूजय सगल पार ब्रह्म। साथ संग पापा मल को वै, तिस भगवती की मत उत्तम हो वै। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पय विषन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म में सोदे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नावे। वेद पुराण सिमरत बूझे मूल, सुख में जाने स्थूल। चहु वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहु वर्णा में जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए, साथ संग पावे जन कोए। कर कृपा अंतर उद्धारे, पस प्रेत मुगध पाथर को उतारे। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जुगत कित न पाइये धर्म, नानक किस मिले जित लिख्या तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगे परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे। सगल संग आत्म दास, ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुकुत सो कहावे। तैसा हरक तैसा उत्सोक, सदा अनंत तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस्माटी, तैसा अमृत तैसी दिखाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो वर्ताए साई जुगत नानक, ओ पुरुष कहिए जीवन मुकुत। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ। आपे कर्म करावन जोग, प्रभ पावे सोई फुन हो। पसव्यो आप हो अंतरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। जैसी मध्य तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल। श्लोक उस तत् करे अनेक जन, अंत न पारा वार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविधानित प्रकार। अष्टपदी
कई कोट कोई पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट वन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार हैं, कई कोट कब का विचार हैं, कई कोट नवतन नाम से आवे, नानक करते कांत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंधज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिरे, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया श्रम माए, कई कोट प्रदेश फरमाए, जित जित लावो तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट से जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बृख निप जाए, कई कोट पवन पाणी वैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशि सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र से छत्र, सगल सामग्री अपने सुधार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्ताम सात, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त्र, कई कोट किए रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मे स्वर्ण थीवे, कई कोट जग किनर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगात, सब ते नेर समूह ते दूर, नानक आप अलिप्रया भरपूर, कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुजोनी फिरे, कई कोट बैठती खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाना तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ के हाथे, कई कोट कई बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश प्रेमंड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक कंकार, कई कोट कीने बहु पांत, प्रभ ते हुए प्रभ मह समात, ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पय सत सधी जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रस सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे श्लोक, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलिहारण है, जल थल में जल सोए अस्पारी, करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई हो, खिन में थाप उठा पनहारा, अंत नहीं किस पारा वारा, हुक्मे तार अधर रहावे, हुक्मे उपजय हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब मेहरिया समाई, प्रभ पावे मानव गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन शास्त्र राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतित उधारे, आप करे आपन विचारे, धुआ सिरिया का आप स्वामी, खेले बिछे अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवरना आवे, कहो मानक ते क्या होया आवे, जो तिस पावे सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब किसी ले, जो तिस पावे सोई करे, अनजानत भिख्या में रचे, जे जानत अपन आप बचे, परमे पूला दैद सावे, निमक माए चार कुंठ फिरावे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम।

वेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार। कभू नृत्य करे बहु पांत, कभू सोए रहे दिन रात, कभू मां क्रोध विकराल, कभू सर्व की हो त्रवाल, कभू होए बह बड़ राजा, कभू के खारी नीकता साजा, कभू अप कीर्त में आवे, कभू पला पला कहावे, ज्यो प्रभ राखे तिन ही रहे, गुरु प्रसाद नाम सच कहे, कभू होए पंडित करे बखान, कभू मोम तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू शिष साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनित जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा वर न कोए, कभू सात संगते पावे, उस स्थान ते बौर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रत एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग, जो जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सत कुर्बान श्लोक, सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतर राज विमान, सो नरक पाती हो स्वान, जो जाने में जो गुणवंत, सो होवत विष्टा का जन, आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन परमावे, तान पूम का जो करे गुमान, सो मूर्खन राज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुकुत आगे सुख पावे, तनमंता हुई कर गर्भावे, तृण समान कछ संग न जावे, बहु लश्कर मान ऊपर करे आस, पल पीतर का हुए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, किन में हो जाए पशुमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय किस करे खुआरी, गुरु प्रसाद जा का मिटाय विमान, सो जन नानक दरगह परवान, कोट कर्म करे हो धारी, शर्म पावे सगले विस्तारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगह को कैसे गवे, आपस को जो फला कहावे, तिसे फलाई निकट न आवे, सर्व की रे जा का मन होए, कहु नानक ता की निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख ना ही कोए, जब ये जाने में किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निचलना ही चीत, जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक छूटे, सहस खटे लखो उठावे, तृप्त नावे माया पाछे पावे, अनिक भोग भिख्या के करे, नै तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजय, सुपन मनोरथ बिठे सब खा जाय, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ पागी से प्राप्त होए, करुण करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करुण करावन करने हार, इसके हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप प्रभ सोए, जो किछु कीनो सो अपने रंग, सबसे दूर सबू के संग, बूझे देखे करे विवेक, आपे एक आपे अनेक, मरे ना बिन से आवे ना जाए, नानक सधीरे असमाए, आप उपदेश है समझे आपे रचिया सबके साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछु उसका ओ करने हार, उसते पिन कहु किछ होए, थान थनंतरे कैसोए, अपने चल आप करने हार, कौतक करे रंग अपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुरु प्रसाद किने विख्यानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे किने बिरले चीना, पला पला पला तेरा रूप, अति सुंदर अपार रूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बखानी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरण जो जन परे, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार अष्टपदी, संत के दुख नाद्या घटे, संत के दुखन जम तेरी छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलिन, संत के दुखन सोबाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान त्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जोन लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन त्रिक जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दोखी का थाओ को नाही, नानक संत पावे ता ओई विगत पाए, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक खिंटिकन ना पाए, संत का निंदक मां त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मा।

संत की निंदक हो सर्व रोग, संत की निंदक हो सदा विजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख। संत का दोखी सदा अपवित्त, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्याग है, संत का दोखी महंकारी, संत का दोखी सदा विकारी, संत का दोखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख के टर है, संत के दोखी को ना ही ठाव, नानक संत पावे ता ले मिलाए। संत का दोखी अद बीच से टूटे, संत का दोखी कितने काज ना पहुँचे, संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर से छोटा, जो सांस बिना मृतक की लोटा, संत के दोखी की जड़ किसना है, आपन बीज आपे ही खाए, संत के दोखी को और ना राखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी यो बिल नाए, ज्यो जल बिहू मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पावक की दन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संत का दोखी धर्म ते रह, संत का दोखी सब मिथ्या कैद, किरत निंदक का तुही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाई है, संत का दोखी नाम रहना जीवाई है, संत के दोखी की पुजे ना आस्था, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख ना तृष्टै कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, कया किरत ना मेटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याव सास विरास, सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को किया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ पागी नानक जन से। श्लोक तजो सियान सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पो जाए। अष्टपदी मानव की टेक बिथी सब जान, देवन कोई कह भगवान, जिस कह दिया रहे अघाए, बहुत न तृष्णा लागे आए, मारे राखे को आप, मान के कृष्णा ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिगन न लागे कोए, पुस्तक मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत्योहार, निर्मल रस नाम रख पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेट ठाकुर का रंग, सात संग दिशा सब संग, चरण चलो मारु गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगे नानक पूजल मथा, बड़ पागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करें विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, एक उठकियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिन्हे निरंजन जानिया, गुर प्रसाद आपन आप सुजय, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत, अन दिन कीर्तन केवल बखान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक से न लागे दुख, जिसको हर प्रभु मन चितावे, सो संत सुहेला नहीं बुलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किससे डर है, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत् सब बूझिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न किस जन्मे न किस मरे, आपन चरित आप ही करे, आवन जाऊं दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रज थाप उथाप, अविनाशी नाही किस खंड, धारण तार रहो ब्रह्मांड, अलख अपे पुरख प्रताप, आप जपाए था नानक जाप, जिन प्रभु जाता सुशोभावंत, सगल संसार उदय तिन मंत, प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण, आपे मेल ले कृपाल, गुरु का शब्द जप पै निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनों कृपा करें बड़ पा गए, नाम जब पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान, जो किछ करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे संग, सहज सुवाय होवे सो होए, करने हार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिससे उपजित माए समाए, ओए सुख निदान उन्हों बने आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु, बिथा जानन हार, जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांधन हार गोपाल, सर्व जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माए,
तिससे विरथा कोई नाय। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभा पे आप, आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचै कोय। तिस बिन नाही तेरे किछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूप पंथ होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल कट सो है। धनवंता होए क्या को गर्व है जहाँ सब किस तिस का दिया दर्भ है। अब सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कह दावे। जे को होए बहता तार तिस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद तू तय हो रोग नानक सोजन सदा रोग। ज्यो मंदर को था मैं थमन त्यों गुर का सोर मन अस्थमन। ज्यो पाखान नाव चढ़ता रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होय विगास। ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे। तिन संतन की बाँच में धूर नानक की हर लोचा पूर। मन मूर्ख काहे बिल लाइए पूर्व लिखे का लिखिया पाइये। दुख सुख प्रभ देवनहार और त्याग तुम कृष्ण चितार। जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे अजान। कौन बस आई तेरे संग लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जब फिर दे माहे नानक पथ खेती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया। तज अभिमान लियो मन मोल राम नाम हृदय में तोल। लाल खेप संतै संचाल अवर त्याग भिक्षा जंजाल। तन तन कहे सब कोई मुख उजल हर दरगह सोए। हे व्यापार बिरला व्यापार है नानक का कह सदबलिहार है। चरण साध के तो तोय पियो अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वट भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिगन के साधु राख है हर गुण गाये अमृत रस चाख है। कोट गई संतें दर आया सर्व सुख नानक ने पाया। मृतक को जीवाल हार भूखे को देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस किसका ओ करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊंच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल किया। जहाँ कह मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए ते लोए जहाँ कह हृदय को होए। सच करनी सचता की रहत सच हृदय सच मुखैत। साची दृष्ट साचा का सच वर्त साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच कमाता। श्लोक रूप ना रेख ना रंग किछ त्रिगुण ते प्रभिन्न। तिसे बुझाए नानका जिस हो वह सो प्रसन्न अष्टपदी। अविनाशी ब्रह्मन में राख मान की तू प्रीत त्याग। तिसते परे नाही किछ कोय सर्व निरंतर एको सोय। आपे बीना आपे दाना गहर गली गही सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साथ तेरे की चरणी पाओ नानक के मन एवं राव। मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई हो। हरण परन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र ना जाने होर। अनद रूप मंगल सज्जा कह सर्व शोक सुनिया करता कह। राज में राज योग में जोगी तप में तपीसर ग्रस्त में भोगी। ध्याय ध्याय भक्त ने सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम त्यावे से। त्यो गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिरावे जाए। ऊंच नीचे तिसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना फेक कराए करंग। नाना विद की नो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूरन सब ठाए। नाना विद करवंत बनाए अपने कीमत आपे पाए। सब काट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीव नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत गे पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगलाकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के समुद्र सुन श्रवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुख सब माहि समाणी। सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त। सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाय विश्वास सत नानक गुरते पाए। सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जा हृदय प्रवेश। सत निर्द बूझे जे कोय नाम जपता की गत होए। आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट तो करने हार अवर न बूझे करत विचार। करते की मित ना जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया।
बिस्मन बिस्म तय बिस्माद जिन बूझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे कोई दाते दुख काटन हार जा कै संग करे संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद दान फल पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है बे सच नानक होशी वे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत प्रेखन हार नाम सत सत यावन हार आप सत्य सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी सबद सत्य सत प्रभक्ता सुर सत्य सत जसुता भूजन हार को सत सब होए नानक सत्य सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कह हृदय विश्वास प्रभाया तत् ज्ञान तिस मंत्र ताया पै ते निरपो होय बसाना जिससे उपजा तिस माहि समाना बस माहि ले बस गडाई ताको किन न कह न जाय बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानकेक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ तारे नानक सो सेवक सास सास तुम्हारे अपने जन का पर्दा टाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत में कोई न लाखे प्रभ के सेवक को ना पहुँचे प्रभ के सेवक पूछते ऊँचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैद प्रगटाया नीकी कीरी में कल राख है भस्म करे लश्कर कोट लाख है जिसका सास न काटताप ताको राख देकर हाथ मानस जतन करत वो पात तिसके करत बिथे जात मारे न राख है और न कोय सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत मन तंत्र पिए नाम रतन जिन गुरु पाया तिस किछ अवर नाही दृष्टाया नाम तन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोत नाम कहु नानक जन कह सत्काम बोलो जस जेवा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करें भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने स्यों रह समाए जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने

मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पुछाता, सो जन सर्प शोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पाप मिटावे, अवर स्यान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, हावन जान न होगी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सब तेरा श्लोक। सतपुरुष चिन जानिया सतगुरु तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेव को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुर्मत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हाटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख वड भागी है, सतगुर सिख का हल्क पल सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समार है, गुर कह गए सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सब ध्यावे, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मतले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक पार गुर को बल जाओ, सर्व निधान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछ परम, सहज ज्ञान ले आना जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइये, सफल दर्शन के सत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर वचन करना गाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुरख हो जाके मंत्र, अमृत दृष्ट पे कह हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए, जेवा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू भूल न पहुँचत प्राणी, अगम गोचर ब्रह्म निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किन न पाई, अनेक भगत बंधन नित करे, चरण कमल हृदय सिमरे, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, यह हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सोए, उस पुरख का नाही करे विनाश, जहाँ के मन प्रगटे गुणतास, आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे, मोह माया कह संग ना ले, मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगास के, नानक परम मोह दुख तय ते नाशे, तपत माए ठाठ वरताई, अनंत भया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेश से, पहु चूका निर्भव होए बसे, सगल व्याध मन ते खै नसे, जिसका साथ इन कृपाधारी, साथ संग जप नाम मुरारी, चित पाई चूके परम गमन, सुन नानक हर हर जस श्रवन, निर्गुण आप सर्गुण भी ओही, कला धारण सगली मोही, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर दिन दूजा नाही कोई, सर्व निरंतर को सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साथ के संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनेक बार नानक बलिहारी, श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक हे संसार अष्टपदी, संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपाव सब मीत विसारो, चरण कमल हृदय में उधारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गौ नाम हर वथ, ए तन संचो हो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माए, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन को चार कुंट टूट धावे, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सुख को नित बाँछे मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस शोभा को करें पली करनी, सा शोभा पर हर की सरनी, अनेक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अवखद लाए, सर्व निदान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान, मन प्रबोधो हर के नाए, दै विस्तावतावै ठाए, ताको विघन न लागे कोई, जहाँ कह हृदय बसे हर सोई, कल ताती ठाडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन सह पूर्ण हो आस, भगत पाए आत्म प्रगास, चित कर जाय बसै अविनाशी, कहु नानक काटी जम फांसी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गौन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यों रतन जन्म का हो उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमर शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंशत नानक फल पाए, संग न चाल तेरे तना, तू क्या लपतावे मूर्ख मना, सुत मीत कुटम अरबंता, इन ते कहो तुम कवन सना था, राज रंग माया विस्तार, इन ते कहो कवन छुटकार, अशस्ती रथ सवारी, झूठा डंफ झूठ पसारी, जिंदिए तिस बुझै न बैगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत को ले आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत,
चरण कमल राखु मन माहि, जन्म जन्म के किल बिख जाए। आप जपो अबरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सार भूत सत हर को नाओ, सह सिवाय नानक गुण गाओ। गुण गाओ तेरी उतर सुमैल, बिनस जाय हो मैं विफैल। होय अचिंत बसे सुखनाल, सांस ग्रास हर नाम समाल। चार स्यानप सगली मना, साध संग पावे सजना। हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगह जयकार। सर निरंतर एको देख, कहु नानक जाके मस्तक लेख। एको जप एको सालाए, एक सिमर एको मनाए। एक कसके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते भय, एक अरात्मा छुप गए। मन तन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परे आतो शरणाए। नानक की प्रवेंती अपनी भक्ति लाए। अश्वदी जाचक जन जाचे प्रवदान, कर कृपा देवो हर नाम। सात जना की मांगो दूर, पार ब्रह्म श्रद्धापुर। सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ध्याव। चरण कमल सुन लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नितनीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्ट मां सुख होए, हर रस पावे बिरला कोय। जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूरन पुरुष नहीं डोलाने। सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाओ साध के संग। परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंधे निर्लाग। बड़ पागी जपिया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुरु ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक की नो सदा निहाल। बंधन काट मुक जन भया, जन्म मरण दुख प्रम गया। इच पुनी श्रद्धा सब पूरी, रव रया सत्संग जूरी। जिसका साथ तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिस्तरे जे काल न पाने, सो क्यों बिस्तरे जे किया जाने। सो क्यों बिस्तरे जिन सब किस लिया, सो क्यों बिस्तरे जे जीवन जिया। सो क्यों बिस्तरे जे अगर में राखे, गुरु प्रसाद तो बिरला लाखे। सो क्यों बिस्तरे जे बिखते काड, जन्म जन्म का टूटा गांड। गुरु पूरे तत् यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संग करो एक काम, आम त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अब रह नाम जपाओ। भगत पाए करिए संसार, बिन भक्ति तन हो सीचार। सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नाश, नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर ही स्वाव। नेत्रोपेक दर्श सुख होए, मन बिकसै सात चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर मया, गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शन दीन दयाल, भगत वत्सल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त प्रतपाल। आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जप है सो ही पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुनिया नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान। सर्व वैकुंठ मुक्त मोक पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़े आई, हर के नाम की कथा मन भाई। बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत। पली सुकरणी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत। सात संग प्रभ दियो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। आपन की आनान का आपके ही फिर जाप। अष्टपदी जब आकार एक अचना दृष्टेता, पाप कुन तब कहते होता। जब कार्य आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस अंकमात। जब इसका वर्ण चिह न जापत, तब हर शोक कौप से व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होत परम। आपन के आप वर्तीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कौ किसको गनी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुर कहु कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहि सुवाय, तब शिव सकत कहु कित ठाय। जब आपे आप अपनी जो तरह, तब कवन निडार कवन कत डरे। आपन चलत आप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपनासन, कहे जन्म मरण को कहाँ विनाशन। जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जाम की द्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रवेका, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर गा दे, तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे। आपन आप ही अचर जा, नानक आपन रूप आप ही उपर जा।
जह निर्मल पुरख पुरख पथ होता तह बिन मैल कहु क्या धोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहु कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संसमावै तह किसे पूर्व कवन तृप्तावै। करण करावन करने हार नान करते का नाय सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माई बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला परवीन तह वीर कते कहाँ कुचीन। जब आपन आप उधार है कौ सगन अब सगन कहाँ विचार है। जह आपन ऊच आपन आप मेरा कह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विस्मन विषम रहे विस्मादे नानक अपनी गत जानो आप। जय अचल अचेद अभेद समाया उहां किसे व्याप्त माया। आपस को आपे आदेश त्यो गुण का नहीं प्रवेश। जय एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप पतियारा तह कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु व्यंतूच ते ऊंचा नानक आपस को आपे पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंचाकार त्यो गुण में कीनो विस्तार। पाप कुंते कही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत। आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखान। आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच है तो नानक एक है। जय अवगत भगत है आप जय पसरे पसार संत प्रताप। दो पाक का पै धनी उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौत करे अनक चोज आपे रस भोग निर्जोग। जिस पावे तिस आपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे। बेसुमार अथा अगणत तोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार। नानक की को पसरिया दूजा कह विस्तार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार। जहाँ तिस पावे ता सिष्ट पाए अपने भाणे ले समाय। तुम ते पिन नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए। जहाँ को प्रभ जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता। जी जन सब ता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनु विसार है। किस तज अवर कहाँ को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जा के सब हाथ अंतर बार जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल। अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपाल है जियन बहु पात जो जो रचियो सो तिसें त्याग। जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करें हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास परमान्या करन हार नानक एक जान्या। जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिथी जाए। सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाए। इसते ऊपर नहीं विचार जा के मन बस्या निरंकार। बंधन तोड़ भय निर्वैर अंधन पूजे गुरु के पैर। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभा पहमेले। साथ संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद। राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का यह स्वभाव। आठ पहर प्रपे कुनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दो लेहो सवार राम नाम अंतर उधार। पूरे गुरु की पूरी दीक्षा जिस मन बसे तिस काज परीक्षा। मन तन नाम जपो लिव लाए दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभे खेप तुम्हारी। एकाटेक रखो मन माहे नानक बहुर ना आवे जाए। तिससे दूर कहाँ को जाए उभरे राखन हार ते आए। निरपो जपै सगल पहु मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन पेखत उदर श्रेष्ठ। चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तान सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसे सो होत निहाल ता कह निकट न आवत काल। अमर पय अमरा पद पाया साथ संग नानक हर ध्याया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश।
हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माए अनेक रंग नाना दिष्टाए नौ निज अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम सुन समाद अनहत नाद कहन न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिष्ठन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंत दह दिशे समाए इसते पिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत में देख सस्यर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल ना कभू डोले सर्व कला कर खेल है खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओतपोत गुरु प्रसाद परम का नाश नानक तिन में ये विश्वास संत जना का पीखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुखमान करण कराम हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावैता करे विस्तार तिस पावैता एक अंकार अनेक कला लखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व पूत आवरतारा सर्व नैन आप पे खनहारा सर्व समग्री जा का तना आप जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की नी माया सब कह मद अलिप्तो रहे जो किस कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता लय समाए इससे होए सो नाही बुरा पूरे कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साचधारी सब साच ओत पोत आपन संग्राच ताकि गत मित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद दान के जान जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकुट जिस हृदय भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत कर आया जन आवन का यह सुहाओ जन के संग चितावे नाओ आप मुकत मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की त्रै चिंद आस अनित्यागो तरंग समझना की तूर मन मांग आप छोड़ बेनती करो साथ संग अगन सागर करो हर धन के पर ले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहजानंद साथ संग भज परमानंद।

पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाले रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप करें लोक के निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जा के मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाद वाजय, सुन सुन अनाद करे तब गाजय। प्रगटे गोपाल महात के माथे, नानक उदरे तिनके साथे। शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभाप मिलाए। मिट गए बैर पे सब ऋण, अमृत नाम साथ संग लैन। सो प्रसन्न पे गुरुदेव, पूर्ण हुई सेवक की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभधारी, नानक निधि खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकागर चीत। सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो निधान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव रिद, बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब के मद सकल के उदास। सुंदर चतुर्थ का बेता, सुंदर सी एक तिष्ठेता। ए फल तिस जन के मुख बने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने। एहु निधान जपे मन कोए, सब जुग में ताकि गत होए। गुण गोविंद नाम तुन वाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखानी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे। जाके मस्तक

0: गुण से वह भरम साग नाम निर्मलता के कर्म सबते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी।
1: वाहिगुरु जी का खालसा।
2: केलबो दी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CIFK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
3: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
4: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
5: You are listening Speak Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.
6: Satnam.

सिक्ख्या सुन, कदी ता अपने पिता जी दी उंगल फड़ के दीवान विच चले जाण, और कदी तेग बहादुर जी नूं ही खड़ाउण लग जाण। एक दिन बाबा जी सवेर वेले सखियां नाल पई खेडदे सन, जो एक सखे रतन नामे ने बाबा जी नूं अपने अगे खड़िया होया देख के धक्का जा दिता। डिग तां पए पर सट दा बचा हो गया। उठ के उस सखे नूं सुभावक इन्ना कहा, ओ बावरे मित्र नूं इस तरह धक्का देईदा है? बाबा जी का कहना ही सी कि वह मुंडा तां शुदाई हो गया, कपड़े पाल दिते, सिर खलेर लिया, कदी हसे कदी गालियां दे और टीमां चुक चुक मारे। बाबा जी और बाकी दे लड़के तां लंगर दा समां देख दीवान विच चले आए सन, पर ओ उत्थे ही पागलां दी तरह इधर उधर फिरदा रहा। जद उसके प्यो हर जी नूं सब गल दा पता लगा तां ओ तीसरे पैर बाबा जी दी शरण आया और बेनती की, हे दीन दयाल, मेरा तां ए ही घोखियां दा चानण है, इस दी भुल खिमा करो। बाबा जी ए गल सुन हरियान होए कि हैं, इस नूं की हो गया? फिर हस के उस मुंडे वल देखिया और कहा, क्यों भाई रतना, की खबर है? महाराज का यह कहना ही सी कि वह नौ पर नौ हो गया। यह गल श्री अमृतसर जी विच सारे उठ गई और लगी बाबे जी की कीर्ति फैलन। हुण तां कई तरह के रोगी बाबा जी पास खेड वेले भेटा लैके आउण, और महाराज जी की चरण धूड़ तां एवें ही कृपा दृष्टि नाल राजी होके चले जाण, और बाबा जी जो भेटा लियाउण अपने सखियां नूं वंड छड्डण। बाबा जी इस तरह रोज विचित्र चरित्र करदे कोई नौ बरस दे हो गए। महाराज नूं उंज तां सभे अपने सखे ही प्रिय सन, पर सब तों वध बाबा मूण जी नामे सखे नाल, जिस दे पिता नूं बाबा जी दे अवतार धारण पर सतगुरां दा वरण वर होया सी, और बाबा जी तों कोई 10 कु महीने उमरां विच छोटा सी, हित करदे सन। खेड विच भी एक पासे दे आप मोहरी बणदे और दूसरे पासे दा इस नूं बणाउंदे। एक दिन बाबा जी ने तीसरे पैर बड़िया खेडा